मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे विभूत थिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

0: ईस्ट एफएम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

ऐं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

निगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ

0: ये लता की आवाज थी समय आज पहले आधे घंटे में, मैं इतने पुराने नहीं सुनाऊंगी, बाद में गाने जो पुराने हैं वो करेंगे। सना आपने कहा है जुमा मुबारक, पहला जुमा है ये मुहर्रम का, बिल्कुल सही। समय मुहर्रम हमारे इस्लामिक कैलेंडर का अहम महीना है। और आप क्या कहती हैं?
1: स्वाभिमान पर लगी चोट की कोई माफी नहीं होती, दो मीठी बातें दर्द भुलाने को काफी नहीं होती, जो एक बार आपके भरोसे को तोड़ जाए उस पर फिर से यकीन करना समझदारी नहीं होती। इसलिए दोस्तों अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, जुमा मुबारक, सलमा आमद किसुमु।
0: अगर आपको धोखा दिया है तो फिर उसे मौका ना दो वही करने का, सलमा बहुत अच्छी बात है। वरना लोग कहते हैं वो पता है क्या बदल गया है, कोई नहीं बदलता इतनी जल्दी, जल्दी या देर से नहीं बदलते। प्यार अली भाटिया कहती है यू मस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों से सीखो, क्यों यू कांट पॉसिबली लिव लॉन्ग इनफ टू मेक दम ऑल योर सेल्फ। आप इतना नहीं जिएंगे कि सारी गलतियां खुद कर लें, क्या बात है। भरत गंगा राम आपने ग्रीट किया है, बहुत शुक्रिया, अदब के साथ ग्रीट किया। चंद्रिका वासंत गोसाई आपने कहा अब सैटरडे संडे आपके बगैर गुजरेगा, जी हाँ एक्चुअली संडे को तो आप आके देख सकते हैं ना हमारा करोगा, जो डैड्स करोगा हो रहा है वहाँ हम होंगे। अमीर अली राणा, परवीन जी विशिंग यू एंड ऑल द लिसनर्स जुमा मुबारक। कहते हैं नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है, फर्क सिर्फ इतना है शराब सुला देती है और प्यार रुला देता है। वाकई दैट वाज अ गुड वन। और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डिड यू नो यू कैन हायर अ ह्यूमन शेप्ड रोबोट टू क्लीन योर होम फॉर अराउंड $150 इन US। सर मैंने आपको दी थी खबर के इंसान के रूप में बन रहे हैं रोबोट्स, बिल्कुल इंसान जैसे, पर ये मशीनें हैं आप देख सकते हैं। तो आजकल काफ़ी इंसानी रूप धार कर रोबोट्स हैं। शमीम कहती हैं कि यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ $150 में आपने घर की सफाई, समझ ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि घर की सफाई कर दे। हैप्पी फ्राइडे कहा है रंजन विनोद ने लंदन से तमाम लिसनर्स को। मंजू डगर आपने भी विश किया है और जुमा मुबारक के सबके मैसेजेस, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये गाना सुनते हैं, ये भी दिल को लेकर है।

0: और सैलीडार ने लंदन से भेज दिया है अपना मैसेज, कहते देखो अपने बड़े बड़े घरों की तलाश मत करो, बड़े बड़े बैंक और अकाउंट्स और बड़े बड़े घर, कहते हैं कि जो कब्र है ना वो सभी की एक जैसी है, उसका साइज एक जैसा, वो बड़ी छोटी नहीं है। थैंक यू। अब चलते हैं मिस्टर एमएल विश्वकर्मा, वक्त भी रोया एक दिन साथ बैठकर, वक्त भी रोया एक दिन साथ बैठकर, वक्त बोला बंदे तू ही ठीक है मैं ही खराब हूं। वक्त ने कहा तू ही ठीक है मैं ही खराब हूं। मिस्टर एमएल विश्वकर्मा वाकई बहुत अच्छे, शुभ प्रभात आपको कहा है सभी लिसनर्स को। सोनल मोदा शुभ प्रभात आपकी जानिब से। रमेश हरिया,
1: आज थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, 10-12 मिनट, और उठ के सीधा रेडियो चालू किया तो आपकी आवाज़ सुनी और आप बोल रहे थे कि घर की सफाई के लिए $150 मिलते हैं, तो ये तो चोरों के लिए अच्छी बात हो गई, चोरों घर भी साफ करते हुए और उसको ऊपर से $150 इनाम भी मिले। यासने की बात है। शुक्रिया रमेश सरिया।
0: नहीं रमेश, वो उस $150 का आपको रोबोट मिल जाएगा, ये ना हो के रोबोट ही सफाई करता फिरे आपके घर की, या लेकिन रोबोट की कीमत बता रहे थे कि देखो कितना आसान है कि आपको घर की अब सफाई नहीं करनी पड़ेगी खुद। ये थी बातें। और समय चिन्मया मिशन जो है, हनुमान हवन इन्होंने रखा है 108 समष्टि श्री हनुमान चालीसा, कहाँ SST टेम्पल की जो मैदान है, ग्राउंड्स है वहाँ, लोअर कबेटे रोड। किस दिन? संडे, इतवार का दिन है 28 जून। 108 हवन कुंड होंगे और आवाज़ें 3000 लोग एक साथ 21 हनुमान चालीसा के साइकिल्स दोहराएंगे। तो समय याद कीजिए, याद रखिए कि 28 जून आपने और कहीं नहीं जाना, SST टेम्पल में चिन्मया मिशन का 108 समष्टि श्री हनुमान चालीसा। ये जो समष्टि है लफ्ज़ मुझे समझ भी नहीं आ रहा सीधी तरह से, लेकिन कहा है, उम्मीद है कि इतना भी गलत नहीं होगा।
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है, खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
4: But this Father's Day, let's celebrate Dad.
5: Papa.
4: What would happen if you gave him an apron and a spoon?
6: Let's find out in the biggest annual cooking battle, the East FM Koraga with Dad edition on 21st June as we celebrate fathers in our life.
4: Come cheer on your favorite teams as they battle it out. Fun games for both kids and adults. Exciting prizes up for grabs, including a grand 25,000 shilling cash prize. Bring the whole family and enjoy a day full of fun, food, entertainment and unforgettable memories from 10 a.m. onwards. Don't miss out. East FM Koraga with Dad. This 21st of June, it will be unforgettable.
7: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
8: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.
9: East FM.
10: East FM.

0: तू कहे तो मैं बता दूं। अब देखते हैं कि किसने हमें क्या बताया है, वरना एक बात भी मैंने आपसे पूछनी थी, लेकिन अगर नहीं वक्त मिला अभी, समझ, हमारी इंटरव्यू जो है उसके मेहमान हैं डेप्यूटी हाई कमीशन इंडिया के जो हैं जनाब सुशील प्रसाद, तो इनके साथ बात होगी, डेप्यूटी हाई कमिश्नर के साथ। लेकिन फिर उस जब 11 बजे के बाद हम बात कर सकेंगे अपने सवालों की, जवाबों की, वगैरह वगैरह।
1: नमस्कार परवीन जी, और जुमा मुबारक। कल योगा डे है ना, तो सुनिए, सबसे कठिन आसन है आश्वासन। आश्वासन आपको पता है ना, किसी को प्रॉमिस करना। सबसे लंबा श्वास है विश्वास। सबसे कठिन योग है वियोग, और सबसे अच्छा योग है सहयोग।
0: सहयोग यानी कोऑपरेट करना, क्या बात है। आश्वासन, मुझे लगा था आश्वासन है कि ब्रेक करना प्रॉमिस, पर आई एम नॉट वेरी श्योर, हमें अपनी टीचर से पूछना। रसीला, गुड मॉर्निंग। कमर जलालाबादी की आपने बात की थी, क्या बात है। आप कहते हैं कि द पोएट ऑफ इमोशंस वो थे कमर जलाल, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द लेजेंडरी लिरिसिस्ट हु पेंड द गोल्डन एयर ऑफ द हिंदी सिनेमा, कमर जलालाबादी। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, क्या बात है। बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाया हुआ है। आपने कहा इन्होंने सुनाया, उन्होंने लिखा था, उनके बेटे ने शायद कहा, माई फादर रोट दिस अनफॉरगेटेबल सॉन्ग इन 1948। इट बिकेम अ लमेंट फॉर हिज ओन लाइफ एज ही फेस्ड द लॉस ऑफ लव्ड वंस, येट हिज प्रेजेंट हिज ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। हिज फिलोसॉफिक मैनिफेस्टेशंस टुक फॉर्म ऑफ हिज सॉन्ग्स, कन्वेइंग अ सटल हैंगओवर ऑफ फिलोसफी एंड रोमांस। कहते हैं कि कमर जलालाबादी के बेटे कि देखो, उन्होंने दुनिया में इतना दुख देखा, इतना दुख देखा, वो बह गया उनके गानों में, उनकी शायरी में। बहुत अच्छे, थैंक यू रसीला। एक दिल के टुकड़े किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगी। और रूपल, जुमा मुबारक टू ऑल द लिसनर्स। वन लाइन, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। अच्छा ठीक है, सुना देंगे पल भर के लिए, और आपका पूरा दिन बन जाएगा सिर्फ एक पल के लिए। माशाल्लाह, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स फ्रॉम द मूवी दाग। जी जी, मेरे दिल में आज क्या है, बड़ा अच्छा गाना है इनका, किशोर का, इसलिए मैं अक्सर सुना भी देती हूँ।
2: प्रवीण जी, मेरे दिल में आज क्या है, ये गाना फिल्म दाग का है, ये गाना किशोर कुमार ने गाया है और साहिल लुधियानवी ने लिखा है, और जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई है। ये गाना राजेश खन्ना पे फिल्माया गया है। ये गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब। और समन जी, ये बात मैंने आपसे पूछनी थी, कुछ वक्त है हमारे पास, जी हाँ, कि देखो बेंगलुरु में एक शहरी ने ऑनलाइन दिलचस्प गुफ्तगु शुरू कर दी है, सवाल उठाया है। कहते मैं हवाई अड्डे, बेंगलुरु के हवाई अड्डे पे टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था, और टैक्सी वालों ने कहा हुआ था कि वक्त इंतज़ार का 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर आपकी टैक्सी यहाँ पर होगी। कहते मैंने देखा करीब सारे मुसाफिर एक ही कतार में खड़े थे, हालांकि एक टैक्सी नहीं थी, ये टैक्सी एक थी, दूसरी जो टैक्सी थी वहाँ कोई भी नहीं था, बहुत, और या फिर बहुत कम। हालांकि उनका अमला बार बार आके मुसाफिरों को कह रहा था, हमारी टैक्सी है, तैयार है, आइए टैक्सी लीजिएगा, वगैरह वगैरह, लेकिन लोग उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बस ये एक जो थी उसके कतार में खड़े हो गए। मैं नाम नहीं लेती, लेकिन समझ, आप सब उस को जानते हैं, उसका नाम क्या है, दूसरी की, दूसरी जो टैक्सी थी उसके लिए कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा था। हम तैयार हैं ले जाने के लिए, फिर भी कोई कान नहीं धर रहा था। मुझे बताएं समिन, एक टैक्सी को इंसान क्यों तरजीह दे, क्यों ये लोग सब एक ही टैक्सी की तरफ जा रहे थे, हालांकि कीमत कम नहीं थी, कीमत में कोई फर्क नहीं था। अगर वो 20 रुपए ले रहे थे तो ये भी 20 ले रहे थे, लेकिन क्यों वो एक ही टैक्सी को लेना चाहते थे? ज्यादातर जो लोग थे मुसाफिर, वो एक ही टैक्सी की ओर जा रहे थे, वजह क्या थी? 07011106106

और समय अब देखते हैं कि पर्दे पर किस किस ने क्या कहा है। बिंदु ने तो नमस्कार सभी को कह दिया था। उनके बाद आए हैं यासर। यासर कहते हैं टुडे इन हिस्ट्री, आज तारीख में, इन यूएस टुडे जून 19, इट्स नोन एज जून टीन्थ। In 1865, Union troops arrived in Galveston, Texas, over 2 years after the Emancipation Proclamation announcing the end of slavery for the last remaining enslaved people in U.S. So, Juneteenth, aaj ke din, aaye the troops. Yes, over 2 years after the Emancipation. Halaki slavery se azadi mil chuki thi. 1961 कुवैत ऑफिशियली गेंड फुल इंडिपेंडेंस, ये बात सही है। और 1963 सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेंटिना टेरेशकोवा रिटर्न टू अर्थ सेफली कंप्लीटिंग अ हिस्टोरिक मिशन दैट मेड हर द फर्स्ट वुमन इन स्पेस। समय ये बहुत ही अच्छी खबर है। 1963 का साल था, आज का दिन था, वैलेंटिना टेरेशकोवा सबसे पहली महिला बनती हैं सुरक्षित आने वाली जमीन पर आफ्टर अ हिस्टोरिक स्पेस मिशन। बिल्कुल। एंड वर्ल्ड सिकल सेल डे, जी आज सिकल सेल डे मनाया जा रहा है समझ सारी दुनिया में, 19 जून केन्या में भी। नोटेबल बर्थडेज तो कहते हैं कि आज के दिन कौन कौन पैदा हुआ है। सलमान रुश्दी 1947 में। समीन, ये सलमान रुश्दी लेखक हैं, आप तो जानते हैं कि इनकी जान को ख़तरा था एक समय पर, जबकि खुमैनी ने इनके खिलाफ मौत का फतवा दे दिया था कि इन्होंने इस्लाम विरोधी मवाद लिखा है और लिखा था। राहुल गांधी आज के दिन

0: जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज इंटरव्यू है, क्योंकि 21 जून ऑस्ट्रल सेंटर में सामने एक इवेंट होने वाला है योग, आप सबको इतना शौक है योग में तो आपको भाग लेना चाहिए। और क्या होने वाला है, क्या होगा वहाँ, डेप्यूटी हाई कमिश्नर इंडियन हाई कमीशन के हमारे साथ हैं और आप हैं श्री सुशील प्रसाद, हिज एक्सलेंसी सुशील प्रसाद हमारे साथ हो गए। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा, 07011061061 पे आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप चाहें तो वॉइस मैसेज भेजिएगा, कोई ऐसा सवाल जो कि आपको योगा के बारे में पूछना है या इस ख़ास इंटरनेशनल योगा डे, डे ऑफ योगा के बारे में आपने पूछना है कि दुनिया में दुनिया कैसे मनाती है, हम कैसे मनाते, क्यों मनाते हैं वगैरह वगैरह, आप पूछ सकते हैं मैं आपका सवाल, वरना मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं। और जनाब सुशील प्रसाद यहाँ पर ड्यूटी में अपनी टर्म शुरू कर चुके हैं, एक साल से केन्या में हैं, इनसे बात होगी। पहले ऐसा करते हैं, खबरें सुन लेते हैं।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News. East FM.
4: President William Ruto has credited an independent judiciary for the success of Kenya's housing program. Speaking during the Africa Chief Justice's ADR summit in Nairobi, Ruto noted that despite legal challenges aimed at stopping development projects, the courts remain essential partners. Marginalized communities are being empowered to play a bigger role in decisions affecting their land, livelihoods and natural resources. Haki Jamii Executive Director Zipora Mudama says the organization's five-year Together for People and Planet program seeks to strengthen the voices of indigenous communities so they can influence environmental and conservation policies at local, national and international levels. The National Council of Elders has praised their role in resolving disputes outside the court system. The council said the combined application of the constitution, religious principles and positive traditional practices is key to mediating conflicts effectively. Speaking during the ongoing forum in Embu, members noted that the alternative justice system promotes access to justice and peaceful coexistence.
5: Hii jopo iliweza kushauriana na wazee, iliweza kuangalia tamaduni tofauti tofauti na ikaja na ile tunaita sera ya kitaifa. Tunaenda katika mkondo ambao tumeweza kutekeleza.
4: Two suspects have been arrested after the anti-narcotics unit detectives intercepted a consignment of bang worth approximately 4.6 million shillings in Nakuru. The operation was conducted along the Eldoret-Nakuru highway following intelligence reports on the transportation of the drugs. Sickle cell patients who undergo a bone marrow transplant are required to remain in hospital isolation units for 30 to 45 days after the procedure. Hematologist Doreen Karimi says the transplant significantly weakens the immune system, with recovery taking between 3 and 6 months, while full reintegration into society may take up to a year. Today is World Sickle Day. That's the news update on East FM. I'm Susan Kimashia.
3: This is East FM, Kenya's premier.
6: East FM, Bemisal Andaz with Parveen Atom.
0: सामिन अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ हैं इंडियन हाई कमिश्नर, डेप्यूटी इंडियन हाई कमिश्नर, तो उनसे बात करनी है वो इवेंट। अच्छा, क्या ये आपका ही है इवेंट, हाई कमिशन ने ऑर्गेनाइज किया है?
7: पहले तो धन्यवाद सारे श्रोताओं को जो अभी बेमिसाल अंदाज सुन रहे हैं प्रवीण जी। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, आज रूबरू हैं आपसे और आपके थ्रू सारे श्रोताओं से. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज फर्स्ट टाइम हेल्ड इन 2015. एज ऑल ऑफ अस नो, प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन ही वाज स्पीकिंग एट यूएनजीए कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2014, he proposed an idea that on 21st June we should celebrate as International Day of Yoga, followed by his speech in December 2014. India proposed a resolution which was supported by majority of the countries, and then it was adopted. And since then 2015 was the first edition when International Day of Yoga was held across the globe in many cities, including in Nairobi and other parts of Kenya. And since then, this is 12th edition. We have been organizing these events across Kenya, whether it's Nairobi or Mombasa or Nakuru or Magadi. So idea is to bring this ancient wisdom of India to the people across the globe, to the modern world.
0: बिल्कुल. और आपने आप मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट मेक्स योगा ग्रो इन पॉपुलैरिटी, इतनी फास्ट ग्रो हो रहा है दुनिया के कोने कोने में. अमेरिका में भी वो पागल हो रहे हैं योग के बारे में, इतने सेंटर्स, वो एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न योगा. क्या है इसका राज, सो पॉपुलर?
7: सो आपको जैसा पता है, योग जो है वो एक वेलनेस टूल की तरह इवॉल्व हो चुका है, और ये पॉपुलर हुआ 2015 के बाद से, जब भारत ने कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए. और हम सभी ने 2021-22 में जो पैंडेमिक हुआ उसको देखा है. उस समय लोगों को जो इम्यूनिटी डेवलप करने की बात आई, तो योगा इमर्ज एज एन यू नो इम्पॉर्टेंट वेलनेस टूल. एंड सिंस इट हेल्प देम टू काम डाउन, टू डिस्ट्रेस, to unite their mind, body and soul, it has becoming very important. And it everybody is trying to adapt and adopt a bit of yoga in their lifestyle.
0: हाँ, पर कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि और भी तो exercises की forms हैं. आजकल टाई ची का बहुत जिक्र हो रहा है, लेकिन योगा की पॉपुलैरिटी कम नहीं. आई मीन, योग कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अदर एक्सरसाइज फॉर्म्स?
7: देखिए, योग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए. आपके पास अपना समय है. वो समय, अगर आप बिगनर हैं, 15 मिनट 10 मिनट आप दे सकते हैं. आपको एक योग का मैट चाहिए, और उसके बाद देन आप बेंडिंग का एक्सरसाइज करें, बैलेंस का एक्सरसाइज करें, या ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करें. सो योगा इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि एक्चुअली उसका बेनिफिट जो आजकल की हम भागदौड़ की जिंदगी में जब ऑफिस में जाते हैं, सो इसको परफॉर्म करने से आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं.
0: बिल्कुल.
7: और आपको कहीं स्टूडियो नहीं जाना, आपको किसी फील्ड में नहीं जाना, आपको कोई इक्विपमेंट अक्वायर नहीं करना. योग करने के लिए
0: एक टीचर चाहिए?
7: शुरू में चाहिए.
0: शुरू में
7: मैं खुद योगा प्रैक्टिस करता हूँ.
0: अच्छा.
7: बट जब मैंने सीखा तो उसके बाद मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीख लिया, तो आपको हर बार साइकिल चलाने के लिए और कोई नहीं चाहिए. आप उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको मास्टर करते रहते हैं. उसी तरह से योग है. आप शुरू में जरूर आप किसी योग इंस्ट्रक्टर के साथ रह करके योग को करना शुरू करें, और एक बार आपने जब कुछ जो पोजेज हैं, पोस्चर्स हैं, आपने उसको कर लिया, आपको अपने आप बेनिफिट लगना शुरू हो जाएगा, और फिर आप अपने आप करना शुरू कर देंगे.
0: तो सुशील प्रसाद साहब, क्या ये जो हैं हर एक के लिए वही हैं आसन्स, हर एक के लिए जो भी कोई स्टार्ट करे, स्टार्ट में सभी एक जैसे ही होते हैं?
7: नहीं, सभी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट, एज जो है उसके अनुसार हम कर सकते हैं. बच्चों के लिए अलग है, जो एजिंग पॉपुलेशन उनके लिए अलग है. मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल का जो योगा का थीम है वो वही
0: aging.
7: है, एजिंग, हेल्दी एजिंग के ऊपर है. सो एजिंग का मतलब ये नहीं है कि जब हम वृद्ध हो रहे हो, मच्योर हो रहे हो, तभी एजिंग. किसी भी समय से एजिंग शुरू होती है. सो कैसे हम अपने आप को हेल्दी बनाएं उस एजिंग के प्रोसेस में, कैसे हम मोबिलिटी को मेंटेन करें, कैसे हम अपने माइंड, बॉडी और सोल की जो इंटीग्रिटी है उसको मजबूत करें.
0: तो आपको नहीं लगता कि ये इन्होंने बड़ी मुश्किल थीम शुरू की है? हेल्दी एजिंग, क्योंकि जो एज हो रहा है वो तो योग करना नहीं चाहता, किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते हैं मैं कुर्सी पर बैठा रहूं सारा दिन।
7: बहुत अच्छी बात बोली आपने, कुर्सी पर बैठे रहने की बात करी है। कल ही हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने यूएन के साथ मिलकर के चेयर योगा किया है।
0: अच्छा, चेयर योगा भी है, मैंने सुना था चेयर योगा के बारे।
7: जो लोग आप जैसा बता रही हैं कि मैं तो चेयर पे बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, मेरे पास समय नहीं है, उनके लिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसमें हमारी जो योगा इंस्ट्रक्टर थे रूपा जी, उन्होंने बताया कि आप चेयर पे बैठ करके कैसे योग कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में देन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, इतने बेनिफिट्स हैं योगा के, इतने बेनिफिट्स हैं, सभी मानते हैं, दुनिया मानती है। और आपको लगता है कि योग जो है, ऑफ कोर्स इंडिया में शुरू हुआ ना, भारत में, क्या ये इवॉल्व हुआ है कि जैसा था वैसा ही है?
7: सो योग जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यह एक एंशिएंट गिफ्ट है टू द मॉडर्न वर्ल्ड। सो शुरुआत हुई भारत में, पतंजलि जो हैं वो योग के सूत्रधार हैं, उन्होंने योग के ऊपर लिखा, योग की शुरुआत,
0: पतंजलि नाम था,
7: पतंजलि योग आज उन्हीं के नाम पे चल रहा है,
0: राइट,
7: ऋषि थे। और उसके बाद से योग लोग करते रहे, बट वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, आम लोगों के साथ जुड़कर नहीं हुआ। लेकिन अभी जब समाज में ज्यादा प्रगति होनी शुरू हुई, बट उसके साथ स्ट्रेस भी आना शुरू हुआ, क्योंकि आपके काम के घंटे बढ़ने लगे, आप घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर थोड़ा समय निकालने की जरूरत पड़ी, तो उस समय योगा जो है वो एक ऐसे फॉर्म के रूप में आया जो आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देता है, काम करना है बट काम को कैसे एक बैलेंस वे में करें ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा हेल्थ है, वो सही रहे और हम अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। सो ये इवॉल्व हुआ है योगा, जो जो पहले था वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न यू नो वर्ल्ड व्यू में वापस आया है,
0: है ना। तो ठीक है, एक आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेते हैं, एक गाना सुनने, मुझे नहीं पता आपको कैसे गाने पसंद है, पुराने गाने सुनते हैं
7: कोई भी गाने आप चला दें,
0: ये आपको डेडिकेट करती हूँ, अगला जो है यहाँ

0: Ons hebben een maar zaten Deputy High Commissioner His Excellency Sushil Prasad Saab, Indian High Commission se wabasta hain, to thoda sa inke bare mein poochte hain. So aap Mexico mein bhi tainat rahe, Vietnam mein bhi, Denmark mein, to please tell us, how was the experience in these countries different from Kenya?
1: सो डिप्लोमेटिक करियर में प्रवीण जी क्या होता है कि हम लोग अलग अलग देशों में जाते हैं पोस्टिंग के लिए और हमारी जो मैंडेट होती है उस देश में रह करके दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं जैसे जब मैं वियतनाम में था तो भारत और वियतनाम के रिश्तों के ऊपर काम कर रहा था फिर जब मैं डेनमार्क में गया तो भारत और डेनमार्क के रिश्तों के बीच के ऊपर काम कर रहा था
0: तिजारती रिश्ते मोस्टली
1: तिजारती रिश्ते हैं कल्चरल रिलेशनशिप फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है
0: right.
1: तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं और हाँ. हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे जो संबंध हैं वो और स्ट्रेंथन हो और प्रगाढ़ हो और आगे जाएं
0: right.
1: तो नैरोबी में मैं पिछले मार्च से हूँ मार्च 2025 में मैं आया
0: हुँ.
1: तब से मैं लगातार भारत सरकार और केन्या सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसी की कड़ी में ये योग के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग मनाने जा रहे हैं
0: बिल्कुल
1: 21 जून को होगा
0: वंडरफुल तो वैसे मैं आपको बताऊं कि आपको टाई ची से कोई कंपटीशन नहीं है ये नहीं होगा कि लोग पर देखे ना आप
1: एक एंशिएंट
0: फॉर्म ऑफ यू सी अब आप डिस्कवर कर रहे हैं पहले तो कभी इसका जिक्र ही नहीं हुआ था है ना लेकिन जिस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं योगा को दैट इज आपकी जो पॉलिसी है बहुत इस मैग्निफिसेंट कि किस तरह से आपने इसको सक्सेसफुल बनाया है अच्छा मुझे बताएं कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी दूर हो जाती है योग के साथ कैसे आपका ध्यान बट जाता है या
1: जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे योग में जो फिजिकल पोस्चर्स हैं वो हैं और साथ में जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो सांस लेने की जो तकनीक है वो भी है योग में ये कहा जाता है कि जब आप उचित तरीके से सांस लेते हैं सो उसमें जो कामनेस आपके अंदर है वो ज़्यादा मजबूत होती है और जो स्ट्रेस की चीज़ें हैं उसके कारण से वो दूर हटती हैं तो कई जो प्रकार हैं योग के अंदर कई ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हमें अपने केस अपने जो हमारा सोल है हमारा जो बॉडी है उसके साथ जोड़ते हैं
0: है ना बिल्कुल देखते हैं कि एक हेलो कृष्ण
2: हेलो
0: जी जी
2: प्रवीण जी
0: आप हमारे मेहमान के साथ
2: म्यूजिक प्रवीण जी ठीक नहीं आ रहा
0: ओके ओके अब वो कोई शिकायत कर रहे थे अच्छा तो ये बात है कि स्ट्रेस रिलीव हो ही जाता है मसल अगर रिलैक्स हो पर जो आप कहते हैं पोस्चर्स एज के साथ अब ये वेल एजिंग वेल के साथ अब बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये योग के पोस्चर्स करना आसन्स करना मुश्किल नहीं है कि आप ढूंढते हैं आसान करवा दो इनको
1: सो योग में सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी की
0: अच्छा
1: डिफिकल्ट योग पोस्चर्स ही हमें करने नहीं है बट अगर कंसिस्टेंसी है अगर हम रेगुलर कर रहे हैं रेगुलर अगर हमने 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का टाइम निकाला है
0: राइट
1: तो उससे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है मोबिलिटी बढ़ती है सो जो एजिंग पॉपुलेशन है उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उन सभी आसनों को करें जो बॉडी अलाउ नहीं कर रही है बट योगा में कई तरह के आसन हैं जिन आसन को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसी को करें लेकिन मेंटेन द कंसिस्टेंसी आप रोज करने की कोशिश करें उसी वक्त पर करें जब आप हर दिन कर सकते हैं
0: अच्छा अच्छा
1: और फिर उसका जो लाभ है उसका बेनिफिट है
0: मिलेगा वरना तो आप गिर भी सकते हैं कोई हड्डी वड्डी टूट सकती है अगर आप अकेले हैं है ना बड़ी मुश्किल
1: आपकी बॉडी जहां तक अलाउ करती है आप वहीं तक
0: राइट राइट
1: आपकी बॉडी जहां तक आपको अलाउ करती है उसी तरह के पोस्चर्स करें
0: बिल्कुल
1: कि जो योग में पोस्चर्स हैं योग क्रिया है वो 1 लाख के आसपास है तो ऐसा नहीं है कि आपने जो पर्वतासन हुआ माउंटेन पोज हुआ या जो और डिफिकल्ट पोज है वही करें आप अपने एज के अनुसार आपका शरीर जहां तक आपको अलाउ करता है उसके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये करना है।
0: ये बाबा रामदेव तो हैं उम्र के, लेकिन वो तो हर आसन कर सकते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ, उन्होंने क्यों कैसे योग को पॉपुलर कर दिया, भारत इसके नेट में आ गया जैसे।
1: योग, उन्होंने अपने जीवन में योग को एक तरह से आत्मसात कर लिया है।
0: हाँ।
1: और योग और बाबा रामदेव जो हैं, उन्होंने एक दूसरे को आगे बढ़ाया है। योग को बढ़ाने में बाबा रामदेव,
0: आप एडमायर करते हैं उनको,
1: बहुत बड़ा योगदान है भारत में आम लोगों के बीच में लेकर के गए। जिन्हों शुरू में जिनको लगता था योग तो एक वर्ग विशेष के लिए है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, घरेलू महिलाएं नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, बट उन्होंने दिखाया कि नहीं, योग सभी के लिए है और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते करते योग कर सकते हैं।
0: तो आपको उम्मीद है कि इतने ज्यादा लोग आएंगे ये जो आपका इवेंट है 21 को?
1: हाई कमीशन की तरफ से मैं आपके सभी श्रोताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ 21 जून को विजया ओसवाल सेंटर में हम लोग 7 बजे एकत्रित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा हमारा। उम्मीद है आप सभी आएंगे, 7 बजे आएं। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो हमारे हाई कमीशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं और उन लिंक को फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करें। आप जरूर आएं, आप जो पोस्टर्स कर सकते हैं जितना कर सकते हैं जरूर करें और इसमें सहभागी बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को आगे बढ़ाने में।
0: जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि सभी इकट्ठे होकर इतनी एनर्जी होती है, पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग एक दूसरे से कॉन्शियस नहीं है कि कोई अलग तरह से कर रहा है, वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा
1: नहीं,
0: है ना
1: नहीं,
0: पोस्टर, तो वो नहीं जरा शर्माते नहीं?
1: नहीं, सामूहिक योग जब आप करते हैं आपकी जो शरीर है जिस लेवल पे आपको अलाउ करती है आप उसी लेवल पे करें, आपके साथ वाले लोग कैसे कर रहे हैं उस पे
0: नहीं, नहीं, है। नहीं है। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कोई कॉन्शियस भी होता होगा, है ना। ओके, सो आप कितने डिफिकल्ट, आपको कितने साल हो गए हैं करते हुए ये योग, ताकि हम मिसाल दें।
1: मैं शुरू के दिनों में योग करता था, बीच में नियमित रूप से नहीं रह सका, बट नैरोबी आने के बाद मैं पिछले 1 साल से ऊपर से लगातार योग कर रहा हूँ। आपके श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि हाई कमीशन जो है वो योग की क्लासेस कंडक्ट कराता है, हमारे पास योगा टीचर हैं और सुबह में 6:30 AM और फिर 9:30 AM पे 2 योगा की क्लासेज होती हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर रजिस्टर करें,
0: व्हाट अ गुड
1: योगा क्लास करें, यह निशुल्क है। भारतीय उच्चायोग इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लेता है।
0: मैंने देखा ये जो योग करते हैं ना वो बड़े सीधे होते हैं और समहाउ आपको पता चल जाता है कि ये शख्स कोई एक्सरसाइज, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहा है जिससे उसका बॉडी अच्छी लग रही है। अब आपके लिए एक सवाल है, यासर हमारे लिसनर हैं, उन्होंने कहा है आई बिलीव द डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन केनिया इज मिस्टर सुशील प्रसाद इज आल्सो द डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेप।
1: दैट्स ट्रू,
0: उन्होंने आपके बारे में काफी सर्च कर लिया है। ओके, एंड द यूएन हैबिटेट। In this account, I have a question. Is there a yoga program introduced or supported by India for these UN agencies in Kenya?
1: UN agencies के लिए हम अलग से नहीं करते हैं, but हम लोगों ने एक योगा क्लास शुरू किया था जो international diplomats हैं और UN diplomats हैं उनके लिए शनिवार को हाई कमीशन में, and कुछ UN के जो डिप्लोमेट हैं और हाई कमीशन के डिप्लोमेट हैं वो अभी भी रेगुलर आते हैं और योगा करते हैं, but जैसा आपको पता है योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो UN के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। सो ये UN का भी मैंडेट है और हाई कमीशन ऑफ इंडिया का भी मैंडेट है कि योग को सभी के द्वार पर लेकर के जाएं।
0: राइट।
1: और इसी के श्रृंखला में हम लोगों ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
0: कल मनाया था
1: हेडक्वार्टर्स में?
0: अच्छा, UN हेडक्वार्टर्स।
1: UN हेडक्वार्टर्स में मनाया था जिसमें डीजी यूनोन आई थी, उन्होंने अपनी बात रखी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर और कैसे योग जो है वो हेल्दी एजिंग को सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने बात किया। साथ में हमारे हाई कमिश्नर डॉक्टर आदर्श वाई का, उन्होंने भी बताया योग की जो विशेषताएं हैं, योग से जो लाभ हो रहे हैं और कैसे हाई कमीशन जो है वो योग को आगे ले जा रहा है केन्या में। और करीब करीब 70-75 डिप्लोमेट्स थे, यूएन के स्टाफ थे, जिन्होंने मिल करके इस योग में भाग लिया।
0: पते आपको मैं एक बात बताऊं कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको बहुत वॉच करती हूं, न्यूज देखती हूं, तो मैं देखती हूं कि इस उम्र में भी वो जमीन पर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं सीधे, और वैसे नहीं चलते जैसे कि उनकी उम्र के लोग चल रहे हों। वो भी योग का बहुत करते हैं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 में उनका जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ, उसके बाद से 2015 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन रहा है, सारे शहरों में मन रहा है। केन्या की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने नैरोबी, मुम्बासा, मंगाड़ी, नारोक, किसुमो, नैवाशा, सो हर जगह पे हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, कार्यक्रम किया है। अभी सिर्फ पिछले सप्ताह की बात है, हम लोग अल्पजेता कंजर्वेंसी गए थे और वहाँ पर हमने योग का इवेंट किया जिसमें सांबोरो जो जनजाति हैं उसकी महिलाएं आई हुई थी और उन लोगों ने माउंट केन्या के बैकग्राउंड में ये योग किया।
0: उफ अल्लाह, वो तो बहुत कठिन, क्योंकि वो तो 6 फुट ऊंचे कूद भी जाती हैं सीधे और वो चलती भी बहुत ज्यादा,
1: बहुत
0: तो उन्होंने कितना अच्छा किया होगा वो फॉलो।
1: बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ।
0: योगा
1: इन नेचर, सवाना ग्रासलैंड, एनिमल्स इन द
0: बैकग्राउंड,
1: माउंट केन्या पीक,
0: दिस मस्ट बी द मोस्ट यूनिक योगा इवेंट इन द वर्ल्ड।
1: बहुत अच्छा रहा,
0: क्रेडिट गोज टू द हाई कमीशन। अच्छा, मैं अब एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और सामने एक कमेंट भी है मिस्टर एमएल विश्वकर्मा का इंडिया से, वो पढ़कर सुनाती हूँ, अगर आपने कुछ कहना है तो लिख के भेजें।
3: भांगड़ा बॉलीवुड हिट्स एंड बैलेंस टू सिंग अलोंग विद
4: ईस्ट एफएम,
3: केन्यास प्रीमियर
4: एशियन मिक्स। इट्स 11:22।
5: माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप मोहब्बत निभाता है, खुद कितनी भी तकलीफ में हो पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
6: बट दिस फादर्स डे लेट्स सेलिब्रेट डैड। What would happen if you gave him an apron and a spoon?
7: Let's find out in the biggest annual cooking battle, the East FM Koroga with Dad edition on 21st June at Bar Box as we celebrate fathers in our life.
8: Come cheer on your favorite teams as they battle it out. Fun games for both kids and adults. Exciting prizes up for grabs, including a grand 25,000 shilling cash prize. Bring the whole family and enjoy a day full of fun, food, entertainment and unforgettable memories from 10 a.m. onwards. Don't miss out.
9: East FM Koroga with Dad. This 21st of June at Bow Box. It will be unforgettable.
7: The East FM Koroga with Dad edition in partnership with The Fun Factory and Pradeep Spices.
10: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और सामने हमारे साथ हैं इंडियन हाई कमिश्नर, डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो हैं हिज एक्सलेंसी सुशील प्रसाद साहब। तो मिस्टर एमएल विश्वकर्मा कहते हैं कि आप एग्री करते हैं कि इनफैक्ट योगा इज रिफाइंड टू सूट ओल्ड एज पीपल एंड यू नो दे कैन डू देयर आसन स्लोली, हु कैन डू द एक्सरसाइजेस स्लोली एंड विदाउट अ जर्क।
1: Yeah, yeah, I agree. Yoga for healthy aging is basically given theme because, you know, it support people of all ages, including the growing ages people, because it helps maintaining your mobility, balance, strength, and independence. This also, bring well-being, mental well-being. So, generally, when we grow, we have to take care of our mobility, our balance, our strength. And if you practice, as I said earlier also, consistently, then you'll, get benefit of mobility, stability, and whatever you are looking for to grow healthy.
0: So do you think that over a certain age, you should only have somebody around you so that you don't have a sudden fall? If you're doing it all alone and you think, oh, I'm feeling better, so let me try this, you may fall and go off balance.
1: It's always good to
0: have somebody,
1: instructor. And if you are doing breathing technique, you do not need anybody.
0: Yeah,
1: you don't have to perform any postures. You are just sitting on
0: and
1: the ground.
0: Chair yoga.
1: And chair yoga also, have certain postures.
0: Okay.
1: But when you are doing breathing techniques, you don't have to, do any postures. You have to train your breathing pattern.
0: Right,
1: so
0: absolutely.
1: That can be done independently.
0: Yeah. Okay, yeah, I agree with you.
2: Hello, Parveen ji, good morning. बहुत अच्छा टॉपिक लेके आज अपने इंटरव्यू रखा है, तो मैं सबसे पहले तो डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर सुशील प्रसाद को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत अच्छी दी है। मैं योगा में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत मानती हूँ, मैं करती भी हूँ, कराती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। और मैं कंटिन्यूसली बहुत सालों से रेगुलरली अपने लाइफ में योगा को अपने मिला दिया है। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपको कि ऑनलाइन योगा कैसा है, अच्छे है कि नहीं, इतना जानना है मुझे। थैंक यू सो मच। नीला शेठ
0: जी, नीला शेठ, उम्मीद है आप करती भी रहेंगी, कराती भी रहेंगी, सो आप क्या कहेंगे उनको ऑनलाइन? मैंने तो सोचा ही नहीं था उस पर भी बात हो जाए।
1: सो कोविड के बाद कई चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें हमने अपने आप को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया है,
0: राइट?
1: और हमने देखा है कि ऑनलाइन मोड के भी उतने ही फायदे हैं। योग जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली करना है, तब इसके परिणाम आएंगे। सो जो हम ऑनलाइन योग सीखते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि अगर आप किसी के साथ या ग्रुप में योग सीख रहे हैं और आपका योग टीचर वहाँ पे होगा, तो वो आपके पास आकर के आपके पोस्चर्स को अगर ठीक करना है तो वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन ऑनलाइन में वो वहाँ से बोलेगा और फिर आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए उस योग पोस्चर को करना है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा मानना है। ऑनलाइन योग के द्वारा भी अगर आपने योग आप सीख रहे हैं या आप सीख चुके हैं, तो वो उतना ही फायदेमंद है, उतना ही यूजफुल है आपके लिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर। और एक लखबीर हमारी लिसनर हैं, वो कहती हैं कि प्लीज़ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द डेप्यूटी हाई कमिश्नर के गुरुद्वारों में, हमने पंगानी गुरुद्वारा में ये जो चेयर योगा है ना, वो रखा था फॉर एल्डरली पीपल, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सीमा प्रसाद हमारे साथ थे, तो इट वाज ग्रेट।
1: बहुत बहुत खुशी हुई मुझे जान करके कि गुरुद्वारे में भी ये चेयर योगा किया गया। हाई कमीशन हमेशा उपलब्ध है, किसी भी तरह की सहायता अगर चाहिए, कोई योग करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में योग कराना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे योग कराना चाहते हैं जहाँ पे लोग आकर के इकट्ठा हो सकते हैं, हाई कमीशन जरूर वहाँ पे योग शिक्षक को भेजने की कोशिश करेगा और ये इंश्योर करेगा कि जो लोग भी योग को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं उनको हाई कमीशन का पूरा सहयोग मिले।
0: ये सहयोग है ना, ये जो कोऑपरेशन है, ये आपका सक्सेस है, मैं आपको बताऊं।
3: हेलो बात करते हैं सारे, नमस्कार, वेलकम मिश्र जी, नो दे योगी दी गल कर रहे हैं, मनु बहुत अच्छा लगिया। मैं भी जेड़ा जेड़े पोस्चर होंदे आ ना इजी होंदे आ, मैं भी ओही करदी आ जिद्दां इन्हां ने कहा ना, मैं भी ओदां ही करदी आ, जिन्ने हो सकदे आ करदी आ योग दे नाल।

0: रौन कर इश्क मेरा तुम किनारा कर गए, छोड़ गए मुझको बेसहारा कर गए, तुम चाहो तो भी ना मिल सको, फिर हमदर्द मेरे बेदर्द बन गए।
1: Your favorites from the